गावन तुदन पवन पाणी बह संतर गावै राजा धर्म दुआरे। गावन तुदन चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। गावन

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध बिचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुरग माशु पयाले, गावन तुदनो रतन उपाए तेरे, आठ साठ तीरथ नाले, गावन तुदनो जोद महाबल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खांड मंडल।

तिस पाछै बचरे शरया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल साध बल जाइया तेरा अंत ना पारावरिया।

ते हर हर रूप समासी। से धन से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

तुम कावाओ, आप हाथ दै मोहे बचावाओ। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सेखो सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को आज संगरिय।

प्राचीन तनह पेवो आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अच्छा।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हव मरे। पुरख जवन

जिसका सबसे आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वसत तजी

अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरे छड जाहे। पहु जल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सहनो कृपाल संभाले साहे साहे। व्यर्था कोई न जाए जे आवै तुद आहे। सलोक महला पंजवां। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतया दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनों ए वात दे। जग मह उत्तम काढ़ी।

नाम सिमरत रहो। जब लग कट सास कीर्तन नाम सिमरत रहो। जब लग कट सास वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।

तुमरी गात मित तुम ही जानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर।

मंडल खंडा हे पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना।

कहो नानक सब तेरी वड्याई। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवते जी सहाय वार। श्री भगवते जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे।

लाइट ऑफ कर दे। लॉक अंदरों अंदर बंद कर दे। की लाइट ऑन? चल पे अंदरों अंदरों वो घुमा दे, अंदरों कुंडी जी अंदरों नप के लाइट ऑफ लाइट बंद कर दे। अंदर नहीं, वो मम्मी ने अंदर नहीं देखना, मम्मी ने तो इतनी देखना।

सहज सुभाए, दर्शन पर से गुरु का जन्म मर सुख जाए। सिफत खसान दे नूर अर्स हो पुरस हो चटिया,

तिस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मन मत उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया से रंग लावे ओह बिनसै ओह मन पछतावे जो दिसै सो चल अनहार लपट रहे होते हैं अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावे नहेता को हाथ नावे कहे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लये लाई मिथ्या तन तन कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असुवस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पत्र रूपाल मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कोता वह मिथ्या मन पर लोभ लुभावह मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथि साकत की यार जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाये मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जेह कट बस्यो हर नाउ नानक ता कह बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख हूँ गंढ लावत जानन हर प्रभु परवीन बाहर पेख न कहू पीन अवर उपदेस आप न कर आवत जावत चन में मर जिसके अंतर बस निरंकार तिसकी सीख तर संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक ऊन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जन अपना किया पहमान आप है आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जान आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमे नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंध तन लाव है तिसको सिमरत परम गत पाव है जिह प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसनाठ पह सिमरोह तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसह त्याग कतवर लुभाव है जिह प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ता का जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मान मुखता को जस रसन बखान जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पाव है नानक पद से ती कर जाव है जिह प्रसाद आरोग कंचन देही लिवला वह तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके जिह प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सासा सिमरो प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे है जिह प्रसाद आपूकन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जिह प्रसाद अस्वस्थ असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत्य सहते आई तिसहते आये जो एक अलख ही हाँ ऊहा नानक तेरी रख जिह प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जिह प्रसाद सुनह करन नाद जिह प्रसाद पिख है बिस्माद जिह प्रसाद बोल है अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सह जे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चल है जिह प्रसाद संपूर्ण फल है जिह प्रसाद परम गत पाव है जिह प्रसाद सुख सह समाव है

ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो हो, गुर प्रसाद नानक मन जागो हो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनोह विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर तू ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कारज पूरे, ते सहजान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ता स्यो राच। जे प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी मया, अपहु कछु न किन्हु लया। जित जित लाभ हो, तित लगह हर नाथ। नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना के अचर्ज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा अंबर न कौन पुरानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुल्लै। साध कै संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहु तावै, साध संग अस्तित मन पावै। साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न भीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हो ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाना साध वटाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ै सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार। साधु कै संग सो धन पावै, जिस तन ते सब को बरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट तो होत निहाल। साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध हृदय बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाम, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जानह, जेता सुनह तेता बखियानह। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा उजते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। इस लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै कस बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अले। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्य समान, जैसे राज रंग को लागै तुलपवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, जो बसला को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव, नानक ज्यो पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे तरु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है, सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पय, नानक जिन प्रभाव करे।
ब्रह्म ज्ञानी सगल केरी नाथ मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी के होय सो पला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बस प्रवसंग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता ब्रह्म ज्ञानी के होय चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अध्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ਪਰਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ ਸਾਧਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ ਮਨ ਕੀ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮੱਥੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹ ਕਰਮ ਤਿਸ ਵੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ ਮੰਤੇ ਬਿੰਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲਖ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਵੈ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ ਮੰਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਹੈ ਸੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੂਨ ਨਾ ਆਵੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਪੂਜੈ ਮੂਲ ਸੁਖੁ ਮਹਿ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ ਚਹੁੰ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਚਹੁੰ ਵਰਨਾ ਮਹਿ ਜਪੈ ਕੂ ਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰੈ ਪਸ ਪ੍ਰਿਤ ਮੁਗਦ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੈ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਉਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣਗਾਮ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨ ਦੇਈ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦਸਨ ਤਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰ ਹੈ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਤੀਰਥਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸੁਰੂ ਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧੌਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾਂਤ ਨਾ ਪਾਵ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਪੇਗਾਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋਹਿਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਮਾਹੇ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਬ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤਰ ਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖੇ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰਾ ਸਭ ਹੂਤੇ ਦੂਰ
नानक आप अलिप्त रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहुजोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे। नानक सब किस प्रभ के हाथे, कई कोट पए बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन। कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बहु पात, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, दिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहार है को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है, अमर पय सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास समारे। नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण करण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलहारण, जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस पावे सोई होग, खिन महता पुता पनहारा, अंत नहीं किछ पारा बारा, हुक्मे तार अतर रहावे, हुक्मे उपजै हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देख अपनी वडियाई, नानक सब मह रहया समाई। प्रभ पावे मानुख गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन सास्ते राखै, प्रभ पावे ता हर गुण पाखै, प्रभ पावे ता पतित उधारै, आप करै अपन बिचारै, दुहां सिरियां का आप स्वामी, खेला बिगसै अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर ना आवे, कहो मानुख ते क्या हुए आवे, जो तिस पावे सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब किछले, जो तिस पावे सोई करे, अनजानत बिख्या महरचै, जे जानत अपन आप बचै, पर में भूला दह दिस्तावे, निमक माही चार कुंट फिर आवे, कर किरपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, किन महनीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृश्य कछु न आवे, तिस तत का उदह दिस प्रगटावे, जाको अपनी कर बख्शीस, ताका लेखा न गने जगदीस, जियो पिंड सब तिसकी रास, कट कट पूरन ब्रह्म प्रगास, अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावे सोई फुनतियो, कबहू ऊंच नीच मह बसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊभ आकाश प्याल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू नृत्य करै बहु पांत, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त मह आवै, कबहू पला पला कहावै, ज्यो प्रभ रख तिव ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ इसनान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया,
अनिक जोन परम है परमिया। नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै, ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै। जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए। कबहू साध संगत एहो पावै, उस अस्थान ते बोहर न आवै। अंतर होए ज्ञान परगास, उस अस्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज अभिमान। सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाना मैं जो बनवंत। सो होवत विष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावै। जन्म मर बहु जोन प्रमावै, तन भूम का जो करै गुमान। सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै। नानक इहा मुक्त आगे सुख पावै। तनवंता हुई कर गरबावै, तृण समान कछ संग न जावै। बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस, पल भीतर ताक होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत। किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान। कूट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार। अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गवै। आपस को जो पला कहावै, तिसह पलाई निकट न आवै। सर्व की रेंजा का मन होए, कहो नानक ता की निर्मल सोए। जब लग जाने मुझ ते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब यह जाना मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निह चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खट्टे लख कोट तावे, तृप्त नावे माया पाछे पावे। अनिक भोग बिखिया के कर, नह त्रिप ताव खप खप मर। बिना संतोख नहीं को राज, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज। नाम रंग सर्व सुख होए, पटपागी किसे प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन करन हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किश कीनो सो अपने रंग, सबते दूर सबहु कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आप है एक आप है अनेक। मर न बिनस आवे न जाए, नानक सद ही रहे समाए। आप उपदेश समझे आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका हो करने हार। उस दे पिन कहो किछ होए, थान थनंतरे कै सोए। अपने चलित आप करने हार, कोतक करे रंग या पार। मन में आप मन अपने माही, नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी। सच सच सच सब कीना, कोट मधे किने बिरले चीना। पला पला पला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जप नान।

आपन किया कछु ना होए, जे साओ प्राणी लुचै कोए, तेस बिन नाही तेरा किच काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभ की जोत सगल कट सो है।

कौन बसाई तेरे संग लपट रहे रसलोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पसेती कर जाहे।

सब किछ तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊच निर्मल करनी करके।

महापुरुष सात केवल प्रधान करतूत सात सजा की बाणी सत पुरख समाय समाणी सत कर्म जाकी रचना सात मूल सात सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसै बुझाए जिसै सब भली सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सचे जन जा कर हृदय प्रवेश सत

जिन जाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध कै संग परे शरण आन सब त्याग।

सर्व कटां कर्त प्रतपाल आदप कारण करतार भगत जना के प्राण उधार जो जो जो पैसो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान।

तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी, जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, तब सेव सकत कहो हो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जो तर है, तब गमन निडर।

पवित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपै परवीन, तह भेद कतेव कहा को चीन। जब आपने आप और तारे, तो सगन अपसगन कहा बिचारे। जय आपन ऊच आपने आप नीरा, चय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा।

मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन बेकत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर्यामी पुरख प्रधान।

कटकट व्याप रहे या भगवंत, तरण माहि आकाश भयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बंदिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पावन पानी बैसंत माहे चार कुंट।

अमृत नाम सात संग लैन सुप्रसन भई गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुनसना कहते कर प्रसाद अपना बतारी नानक निभीखे हमारी प्रभु की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖਿਹੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਦ ਰਾਹ ਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਆਖ ਹੈ ਮੰਗ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਜੇ ਤਿਸਟ ਉਫ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਤੀਰਥ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਕਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸਤ ਧੜੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾ ਹਨੁਮੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਅੜਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵ ਹੈ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵ ਹੈ ਰਾਹੋ, ਸੁਣਿਆ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ,
सुनया दुख पाप का नास। मन की गत कही न जाए जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार मन का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन सुरत हुए मन बुद्ध मन सगल पौन की शुद्ध। मन मुह चोटा न खाए मन जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन मार्ग ठाक न पाए मन पत स्यों परगट जाए। मन मग न चल पंथ मन धर्म सिति संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन पाव है मोख द्वार मन परवार साधार। मन तर तारे गुर सिख मन नानक पवह न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रदान पंचे पाव हैं दरगह मान। पंचे सोह हैं तर राजान पंचा का गुर एक त्यान। जे को कह कर विचार करते कह करण नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझ हुए सचियार तबल उपर केता पार। धरती होर पर होर होर तिस्ते पार तल कमण जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया उड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवाल एहो रूप केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई फली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे सही पली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेच मल पक खाहे असंख निंदक सिर करह पार। नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो। असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण। अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे। जेता कीता तेता नाओ विणनावे नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार। परिये हथ पैर तन देहे पानी धोता उतरस के। मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओह तोए। परिये मत पापा कै संग ओह धोपै नावे कै रंग। पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ल जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जाहो। तीरथ तप दया दत्त दान जे को पावे तिल का मान। सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ।
सब गुण तेरे मैं ना ही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुत्ती माहु कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त ना पायो कादियां जे लिखन लेख पुराण थित वार ना जोगी जान रुत माहु ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जान सोई किव करे अख किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सबको आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जक होवे नानक जे को आपो जाना अगै गया न सो है पातालां पाताल लख आगासां आगास ओड़क ओड़क पाल चक्के वेद कहन एक बात सहस अठार है कहन कतेबा असरु एक तात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाण आप सालाही सालाही एती सुरत न पाईया नदियां अतै वह पवह समुंद न जानिया है समुंद सहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो ना विसरह अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुनण न अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहता कहिए बहता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल न तमाए केते मंगह जोद अपार केते अगणत नहीं विचार केते खप टुट है बेकार केते लैल मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केतिया दुख भूख सदमार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए होर आख ना सकै कोए जे को खायक आखण पाए ओह जाने जेतिया मुह खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जिसनों बख्शे सिफत साला नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल पंडार अमुल आवह अमुल ल जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्यान आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करहे ता आख न सकह केई के जेवड पावे तेवड होए नानक जाण साचा सोए जे को आख बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावार गावार सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परि स्यों कहियन केते गावन हारे गावे तोहनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इंदा सुन बैठे देवत्यां दरनाले
गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पण न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबल सूरा गावह कहानी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाहो सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करह विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावह लेखे आवहै भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै उन्ना नदर न आवै बहुताय हो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी भो लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस ए तराहे पत पवड़ियां चढ़िया होए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उतै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का को करम केते पवन पाणी वैसंतर केते कान महेश केते बरमे काड़त घड़ी है रूप रंग के वेस केतियां करम भूमि मेर केते केते धूप देस केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतियां खाणी केतियां वाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद श्रम खंड की बाणी रूप तिथै काड़त घड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कह पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध करम खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन महराम रहया पारपूर तिथै सीतो सीता महमा माही ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे
तिथै भगत वसह के लोक करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसह निरंकार कर कर वेख नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर पांड जे को कथै ता अंत न अंत तिथै लो आकार जिव जिव हुकुम तिवै तिवकार वेख्या विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार हिरण मत वेद हथियार ओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल करिए शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता।

वच धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले

0: नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं चप छंद त्व प्रसाद। चक्र चिह नर बरन जात अर पात न हिंजहे, रूप रंग अर रेख भेख कूस कह न सकत कहे। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहि जय, कोट इंद्र इंद्रणा इंद्राण शाहे शहान गणि जय। त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत, त्व सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत। कुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे, नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये, नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे, नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग, नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग, नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते, नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अडाहे, नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे, नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाधे, नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे, नमस्तंग सोएकै नमस्तंग अनेकै, नमस्तंग अकूते नमस्तंग अजूपे, नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे, नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे, नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे, नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्गाते, नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अकूते, नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके, नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे, नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने, नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे, नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे, नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे, नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्त रम्ये, नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे, नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते, नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे, अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे, नमस्तंग निर्धामे नमस्तंग निर्वामे, नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले, नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे, नमो सर्वखापे नमो सर्वतापे, नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले, नमस्तस्त देवै नमस्तंग अपेवै, नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुवन्मे, नमो सर्वगोने नमो सर्वपोने, नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे, नमो काल काले नमस्तस्त दयाले, नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अवर्णे, नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग, नमो सर्वतंदे नमो सत अबंधे, नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके, नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे, नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते, नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे, नमो सर्व सोकं नमो सर्व पोखं, नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता, नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे, नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले। चाचरी छंद त्व प्रसाद। अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेक हैं अनाम हैं अकाम हैं, अधे हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं, त्रिमान हैं निदान हैं, त्रिपर्ग हैं असर्ग हैं, अनिल हैं अनाद हैं, अजय हैं अजाद हैं, अजन्म हैं अवर्ण हैं, अपूत हैं अपर्ण हैं, अगंज हैं अपंज हैं, अचूज हैं अचंज हैं, अमीक हैं रफीक हैं, अतंद हैं अबंध हैं, निर्भूज हैं असूज हैं, अकाल हैं अजाल हैं, अलाह हैं अजाह हैं, अनंत हैं महंत हैं, अलीक हैं निरश्रीक हैं, निर्लंब हैं असंब हैं, अगम हैं अजम हैं, अकूत हैं अछूत हैं, अलोक हैं अशोक हैं, अकर्म हैं अपरम हैं, अजीत हैं अपीत हैं, अबाह हैं अगाह हैं, अमान हैं निदान हैं, अनेक हैं फिर एक हैं। भुजंग पर्यात छंद। नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने, नमो गीत गीते नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य नमो राद नादे, नमो पान पाने नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, प्रभंगी प्रमाथे समस्ति विभूते, कलंक मिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम विरधे, नमो शस्त्रपाणि नमो अस्त्रमाणि, नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देव सुतर्मे, नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे, नमो शाह शाह नमो पूप पूपे, नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं कोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चात्री छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं कुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निदाने नमस्तुंग निर्नाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोको रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्स्यं नमो सर्ववरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपरचन त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगे अचल पोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं उगता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख नाराग जत्र तत्र दिशा वसा होय फैले हो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे सर्वमान सर्वत्रमान सदैव मानता है एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जान ही जेह वेद और कतेब रूप रंग न जात पा सो जान ही कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मन विहीन चक्कर बकर फिरा चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विस्वरच्यो स्वयंभव गण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंगराग नारंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनातम एक पुरख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तयन पेख सर्व शास्त्र न जान ही जिह रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जा कह नित पाखत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र ना वही बहु चित मधुपार छंद तो प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु शाहन शाहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म आदिस्य तर्म सर्वा पर अंडन बाढ़ चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग नामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दानी चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती, चत्र चक्र परती, चत्र चक्र पाले, चत्र चक्र काले, चत्र चक्र पासे, चत्र चक्र वासे, चत्र चक्र मान्य, चत्र चक्र दान्य, चाचरी छंद, ना सत्र ना मित्र ना परमंग ना पित्र ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाये, ना चित्र ना मित्र परे है पवित्र, प्रीति स अदि स अदृश्य अकृश्य, भगवती छंद तो प्रसाद कस्ते, क्या छिज देस क्या पिज पेस क्या गंज कर्म क्या पंज परम, क्या पिज लोक क्या दित सोक क्या अवधूत वर्ण के विभूत कर्ण, के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण, के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपहो अनूप है, के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के कै अधीन है के रोजी रजा कै रही मै रेहा कै, के पाक बैब है के गै बुल गैब है के अफुल गुना है के शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है, के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है, के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है, के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है, के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है, के हुसन अल वजू है तमाम अल रुजू है हमें सुसलाम है सली कुतमुजाम है, गरीब उल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंद उल मकान है जमीन उल जमान है, तमीज उल तमाम है रुजू वल निधान है अरीफ उल अजीम है रजा एक यकीन है, अनेक उल तरंग है अपेद है अपंग है अजीज उल निवाज है गनीम उल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है, उवंगाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी, त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुराग्य, त्रिपुक्त स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकं प्रणास है पृथुअल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है परयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परयुक्त अनूप है, चाचरी छंद, अपंग है अनंग है अपेक है अलेक है, अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है, अजय है अभय है अपूत है अदूत है, अनास है उदास है अतंध है अबंध है, अपक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है, निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है, अलेख है अपेख है अडा है अगा है, असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है, अनित है सुनित है अजात है अजाद है, चरपड़ छंद तो प्रसाद, सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्याता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राण सर्वंगत्राण सर्वंगकर्मं सर्वंगतर्मं सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ता, रसावल छंद तो प्रसाद, नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते, प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात, निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है, भगवती छंद तो प्रसाद, के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुलसलाम है समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है के हुसनुल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है, के रोजी दिहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है, गरीब बोल के राज हैं, गरीब बोल निवाज हैं, हरि फूल शिकन है, हेरा सुल फिकन है, कलंक प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजाइक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब के राह हैं, के नरकं प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, के सरबुल गवन हैं, हमें सुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परम परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेसुल अलेख हैं, हमें सुल अपेख हैं, जिमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, के जुर्रत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अपंग हैं, मधुपार छंद त्व प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम, अरपर अगंज हर नर प्रबंज, अनगन प्रणाम मुन मन सलाम, हर नर अखंड बर नर अमंड, अनुपव अनास मुन मन प्रकाश, गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम, अंशज अंग आसन अपंग, उपमा अपार गतमित उदार, जल थल अमंड दिस्विस अपंड, जल थल महंत दिस्विस बेअंत, अनुपव अनास त्रित तर तुरास, आजान बाहु एक सदा हो, ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अंश जगात आज जनाबात, अंचन जगात अनरंज बात, अनटुट पंडार अनठट अपार, आडीठ धर्म अत तीठ कर्म, अनब्रण अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद तो प्रसाद, करुणालय है अरकालय है, खलखंडन है महमंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्व उबारण है, चित के धरन है जग के कर्ण है, मन मान्य है जग जान्य है, सर्वंग पर है सर्वंकर है, सर्व पास्य है सर्वनाश्य है, करुणाकर है विश्वंभर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है खलखंडस है, परते पर है करुणा कर है, अजप्पा जप है, अथप्पा थप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणाकृत है, अकृता कृत है, तरणी तृत है, अमृतेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता अमृत है, नर नायक है खलकायक है, विश्वंभर है करुणालय है, निप नायक है सर्व पायक है, बहुपंजन है अरगंजन है, तापन है जप जापन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हर्ता हर है, परमात्म है सर्व आत्म है, आत्म बस है जस के जस है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग काम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पोज पोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते, कलंकार रूप कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक श्री छंद, अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनासकास, अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अगाढ़ अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी, नारागे नारंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजुला नामे समस्तुल निवासे, निकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते, सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी, करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजायब विभूते गजायब गनीमे, हरियं करियं करिमुल रहीमे, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते, स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कौन के गौन को जात निवारे
1: एते पए तो कहा पए भूपत अंत को नागे ही पाए पधारे जीत फिरे।

मरण काल का द्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पछा श्री अस्तुज जो करी हो रचा राख लिहो मेरा कनुहारे साहिब संसहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा।

0: सच्चे तुद आखे लख करोड़, सच्चा सप्तान सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सत्य है सच, जो मर जमे सो कच नी कच महला पहला।
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाव, वड्डी वड्याई जा सच न्याव, वड्डी वड्याई जा नेचल थाओ, वड्डी वड्याई

मुसलमाना सिर्फ सरयत पढ़ पढ़कर है विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला दर्शन रूप पार तीर्थ नावर चाप।

द्वापर तप का सतगर्थ वाहो कलयुग रथगन का कूड़ गर्थ वाहो महला पहला।

ललमाला तिलक ललाटंग धोती वस्त्र पाटंग जय जान ब्रह्म कर्म सफ कुट निश्चो कर्म कौ नानक ने चो त्यावै मिण सतगुर वट न पावे पौड़ी।

चटिका तेड़ धोती तो कखाई हथ फिर जगत कसाई नील वस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश तान ले पूजे प्राण भाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार उपर है बैठे कूड़े यार मत पिटै वे मत पिटै ए अना साडा पिटै तन पिटै फेर करेन मन झूठे चुड़ी भरेन पावना निक सच ते आई है सच हो वै तो सच पाई।

गत पाव है सुख सहज अनंदा, काटे जम के फाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज बिचार्यो, हर संत जना पह आहा। तिना प्राप्त इहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा। से बडभागी से पतवंते, से पूरे साहा। सुंदर

दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिसै सो छारा रहाओ जिन किया तिस सिमर परानी जियो प्राण जिन तारा तिसह त्याग अवर लपटा वह मर जन्मह।

यह टहल मुहि करना, बिकसै मन हुवै परगासा, बहुर न गर्भै परना। सफल मूरत परसो संतन की, यह

छोड़ न कतहु जाता रहाउ। बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता। अठसठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजिया जिन तीनों सौत विधाता। सगल समूह लै उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महल्ला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान न पाई है। अनेक प्रकार

कटे खिन पीतर संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श सुमाई है देव गंधारी महल्ला पंजवां।

हमरा गुण अवगुण सब सहया, कर मस्तक तार साज निवाजी, मुए दुष्ट जो खया, पर उपकारी सर्व सदारी, सफल दर्शन सहजया, कहु नानक निर्गुण कौ दाता, चरण

संत संग नित रही है। एक आधार नाम धन मूरा अनद नानक इहो लही है। राग देव गंधारी महला पंजवा घर तीजा

अन दिन हर मिल अन दिन गुर मिल गाय रहाओ मिल्यो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कतहु जाए अनिक अनिक भात बहुपेखे प्रैरोम न समसर लाए मंदर भाग सोभ द्वारे अनहत ऋण।

छुटकी रे मन छुटकी रे साकत संग न छुटकी रे रहाओ। ज्यों काजर भर मंदर राख्यो जो पैसै कालू खीरे। दूर हो ही ते भाग गयो है जिस गुर मिल छुटकी त्रि

जगत मैं झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत रहाओ, मेरू मेरू सबै कहत है, हित स्यो बाधे उचीत, अंतकाल संगी नह को, यह आश्चर्य है रीत, मन मूर्ख अजहू नह

नाम अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपिया पाप गवाते राम पतित पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए चहु कुंडी चहु जुग जाते राम हौ मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हर अमृत हर सरना

ये शरीर उन्हें ही दिता है, आज नहीं ते कल उन्हें ले जाना है। जिसकी वस्त सोई ले जाएगा, रोज किसे से कीजिए, रोज ना करी, कोशिश करी श्वास श्वास परमात्मा का नाम जपी, फिर तिथे तू समर्थ जिथे उस रूह दे नाल जिथे किसे दी पहुंच नहीं उथे परमात्मा दे नाम दी पहुंच है। नांगे आउना नांगे जाना, कहंदे ने बिना कपड़िया तो आया सी, मिट्टी दी ढेरी बन के मिट्टी विच लीन हो जाएगा, जाएगा कि हर जस रे मना गाए ले जो

एक बारी सारे कह दियो, क्योंकि रावण दे एक लख पूत सवा लख नाते। कदे भी हंकार ना करिए, निम्रता विच रहिए, प्यार करिए एक दूजे। इस परिवार का प्यार वेखो, देखण नूं मिल रिहा अज दूरों नेड़े सारे आए ने दुख वंडाउण वास्ते। एक लख पूत सवा लख नाती, रावण दे एक लख पुत्र सन ते सवा लख पोतरे सन। होया कि तेह रावण कर दिया ना बाती। अज कोई दीवा जगाउण वाला नहीं, जिन्हां ने नाम जपया, सेवा कीती, सिमरन प्यार ही प्यार वंडिया, महाराज दे गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन ने साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो। वो मर भी जाते ने, उन्हां दे नाम दे बंदगी दे दीवे जगदे ही रहिंदे ने, लंगर लगदे रहिंदे ने, कीर्तन होंदे रहिंदे ने। ऐसी कमाई आपां करनी सारी।

एक बारी फिर धन्नवाद है। बडवाल जी बेंत सज्जन ऐसे ने जिन्होंने अगे हो के सारिया सेवावां निभाइया। सचे पातशाह मेहर वरताउण, मेरी भैन वरिंदर कौर जिन्हां नाल स्नेह है प्यार है, बच्चा गुरनीत सब नू महाराज पाणा मन्नण दा बल बख्शिश करन। भैणां नू बेनती है नाम दा आसरा रखो, एक दूजे दा ख्याल रखो। जदों एक दूसरे नाल प्यार करांगे ते फिर रब दियां होर असीसां मिल जाणगियां।

0: సగల సమగ్రి
1: तुम ही जानी नानक दास।
2: बोलो जी, बोलो जी। अरदास को अंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई प्याय फिरंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याइए। जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कर नौ निदावै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी, बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वहाई देख के अंडिट कीता तिना प्यारिया सच्यारे दी कमाई दा ध्यान करके। बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सी दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चिरवाए गुरुद्वारे की सेवा लई कुरबानियां कीतियां सिखी केसा स्वासा संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिना दी कमाई दा ध्यान करके। बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारे की कमाई का ध्यान करके। बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रछिया रहत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाव दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसा जी के बोल वाले। बोलो जी, बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पर्दा रखा आप अकाल पुरख वाहेगुरु। हे अकाल पुरख सतगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जी। श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारा गुरुधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दी सेवा संभाल दर्शन दीदार प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शिश करो। निमाणियां दे माण नितानियां दे तां नियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवाज। धन गुरु नानक साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी दाता जी आप जी दे चरणा कमलां विच अरदास बेनती है। जिहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदी उठी जाए दे महा वाक अनुसार। बच्चा अजय सिंह सैणी संसार की यात्रा कर दिया महाराज जी तुहाडे पाणे अंदर तुहाडे चरणा विच जा विराजिया सच्चे पातशाह तिना दी अंतम अरदास तिना दा शरीर अगन भेट करन तो बाद गुरु घर विखे महाराज संगतां ने हाजरियां भरियां। परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ कराए सन संपूर्णता हुई उपरंत मेन हाल विच दीवान सजाए गए हैं। दाता जी विछड़ी होई रूह नूं परिवार दी इच्छा है चरणा विच थां बख्शिश करियो। दाता जी पिता जी सरदार दलजीत सिंह सैणी माता सुरजीत कौर सैणी ब्रदर अमरदीप सिंह सैणी समूह परिवार तुहाडे चरणा विच हाजरियां अरजोई लैके खलोता है सच्चे पातशाह भाणा मन्नण दा बल बख्शिश करो। तुहाडे नाम दा आसरा बन जाए तुहाडी बंदगी कीर्तन दा आसरा बन जाए सच्चे पातशाह जी मेहर करियो। सारियां संतां ने मिल बैठ के हर जस कीर्तन नाम जपया सब दी हाजरी प्रवान करियो सब दे घरां विच नाम दा प्रताप बनायो आपसी तालमेल बना के रखियो घरां विच सुख वरतायो। बच्चा अजैस सिंह सैणी कोई भुल चुक संसार विच विचरदिया हो गई होवे महाराज जी बख्श लेना अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पौजल फेरा कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नवेरा। महाराज जी चरणा विच थां बख्शिश करियो महाराज जी पिछे परिवार की पालना करियो रखवाली करियो हौसला बख्शिश करियो। दाता जी इस वेले परिवार वालों कड़ा प्रसादी देग हाजिर है भोग लग्या प्रसाद जो भी छके सतना वाहेगुरु वाहेगुरु जपे ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

लेकिन कोई हमारे सुख हुआ दुखनों बिताए जुग जाके सब आप अंतर बाहर जानो साहब रह गया सब ऊपर होवत के पाल पाले जिये को बात जो जो रचो किसे ध्यान विश्वास करवाने करण हर नानक भी जाने सेवक को सेवा बनाई उत्तम भूषण पर पाई तो वह निर्वय अन्य चीजें घुटे पैरंग करो आनंद भावो परमानंद वचन हर के गुणगाओ काम कर दृदय बताओ मन इच्छे नानक फल पाओ की पूरी दिखिया जिस मुझे बात कर सच व्यापार करो व्यापारी दर्गे निगे एक तुम्हारी जिंदे दूर कहाँ हो जाए उन्हें राशन हार जाए इस राके ना ही रूप नाम जपन हो वस्तु सारा रसूरा नानक साके का रसूरा चरण कमल जाके अनु सफल दर्शन सुंदर अनुसार इसमें बसे तो हो